युगों से आज तक हर युग में जब जब संगीत का युग आया, जब संगीत में क्रांति आई, आशा दीदी की आवाज ने उन क्रांतियों को हर मोड़ पर एक नया रास्ता दिखाया। तुम ही संगीत की जगह हो, तुम ही संगीत की क्रांति हो, ये सफर जारी रहेगा। दम मारो दम, मिट जाए गम, गम की दवा तो आपकी आवाज है, गम की दवा शराब नहीं।

0: ये तो क्या होता है।
1: हाय, दिस इज सुरेंद्र सिंह, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लिसन टू माय ब्यूटीफुल कंपोजिशन।
0: मुतेलाकपुराचा ही तो क्या होता है, और वो ही होता है जो मंजूरे खुदा होता है।